0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online और radio पर.
2: नमस्कार दोस्तों, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है. आज 15 जून 2026 की शाम, घड़ी में 5 बज चुके हैं और अब वक्त है दिन भर की खबरों और अहम अपडेट्स पर नजर डालने का. मैं हूं आपकी होस्ट भव्या पांडे और आज के शो की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजुरी और हुईवुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. नमस्ते ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर के सारे श्रोता जो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं. मैं हूं भव्या और अगले एक घंटे तक हमारा साथ बना रहेगा. सुनेंगे आज की खबरें, भारत से समाचार और फीफा विश्व कप से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स. उसके बाद करेंगे उन चुनौतियों की बात जो आज ऑस्ट्रेलियाई समाज के सामने खड़ी हैं. ऑनलाइन गलत जानकारी

नफरत भरी भाषा, एंटी सेमिटिज्म, इस्लामोफोबिया और प्रवासियों के प्रति बढ़ती नकारात्मक सोच जैसे मुद्दों पर ऑस्ट्रेलियन रेस डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर गिरिधरन सिवारमन अपनी राय साझा करेंगे एसपीएस हिंदी के साथ, और यही बातचीत आज आप तक लेकर आऊंगी। ये बातचीत दो भागों में है और इसका पहला भाग हम आज सुनेंगे, और कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हम मिलेंगे अभिनेता विक्रांत नारायण से, जो जल्द ही हाउ टू टॉक ऑस्ट्रेलियन द मूवी में नजर आने वाले हैं। वो हमें बताएंगे कि कैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ लैंग्वेज के छात्रों की ऑस्ट्रेलिया यात्रा एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है और वे सिडनी या मेलबर्न की जगह पहुंच जाते हैं डबो में। और बातचीत में आज हम जानेंगे कि इस फिल्म की पूरी कहानी क्या है, सांस्कृतिक गलतफहमियां क्या जुड़ी होती हैं ऑस्ट्रेलियाई कल्चर को लेकर, और किस तरह से ह्यूमर यानी हास्य को हम एक जरिया बना सकते हैं कल्चर को समझने के लिए। अंत में हम जानेंगे कि पालतू जानवर जो होते हैं उनकी जो देखभाल है वो हम ऑस्ट्रेलिया में रहकर किस तरह से कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के खास अंश में। तो ये सब कुछ होगा आज के कार्यक्रम में, और इस पूरे घंटे के दौरान मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहें, संदेश अपने आप मुझे भेजते रहें। नंबर है 0439799767। और आज का सवाल आपको बता देती हूँ, तो आज हम पेट्स से संबंधित एक अंश सुनने वाले हैं। ऐसे में जानना चाहती हूँ, क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, यानी क्या आप एक पेट लवर हैं और आपने कभी कोई पेट रखा हो, या फिर अगर नहीं भी है तो मैं जानना चाहती हूँ कि यदि आपको मौका मिलता है तो आप कौन से जानवर को एक पेट की तरह अपने साथ रखना चाहेंगे। नंबर है 0439799767। इसके अलावा बहुत सारे गाने आपके लिए आज लेकर आने वाली हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहें। लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं आज का न्यूज फ्लैश। प्रस्तुत है 15 जून 2026 का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। ईरान ने पुष्टि की है कि अमेरिका और इसराइल के साथ विभिन्न मोर्चों पर जारी संघर्ष को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया आज रात से शुरू हो जाएगी। ईरान ने उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि आने वाले 60 दिनों के दौरान दोनों पक्षों के बीच वार्ताएं जारी रहेंगी। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि यदि समझौते का उल्लंघन हुआ तो तेहरान जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस समझौते की पुष्टि करते हुए सभी पक्षों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बिना किसी शुल्क के समुद्री यातायात के लिए खोलने तथा अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी को तत्काल हटाने की अनुमति दे दी गई है। अमेरिका और ईरान के बीच औपचारिक शांति समझौते पर इस शुक्रवार स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि ये समझौता सफलतापूर्वक लागू हो जाता है तो इससे मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों को भी राहत मिल सकती है। वहीं इस शांति समझौते का स्वागत करते हुए यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सत्यापित कदम उठाने की स्थिति में वे संबंधित प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार हैं। साथ ही कतर और जापान समेत कई देशों ने भी इस समझौते का स्वागत किया है, जबकि कतर ने समझौते में मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान का धन्यवाद किया। वहीं बात करें सिडनी की, तो सिडनी के कूजी बीच पर हुए शार्क हमले के बाद एक बार फिर शार्क नियंत्रण उपायों और शार्क किलिंग को लेकर बहस तेज हो गई है। शनिवार सुबह समुद्र तट पर तैर रही लगभग 30 वर्षीय एक महिला पर शार्क ने हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद पूर्वी सिडनी के कई समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ विस्तृत बातचीत की है। ये बातचीत फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन से पहले हुई है, जहां यूक्रेन में जारी युद्ध प्रमुख मुद्दों में शामिल है। वहीं स्विट्जरलैंड में जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस मुख्यालय के बाहर हजारों प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। शुरुआत में शांतिपूर्ण रहे प्रदर्शन के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन और टियर गैस का इस्तेमाल किया। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में फेडरल स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना यानी NDIS में प्रस्तावित बदलावों को लेकर

कर उठ रही चिंताओं को स्वीकार किया है। सीनेट जांच समिति को दो हफ्ते के भीतर 4,000 से अधिक सार्वजनिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। वहीं आलोचकों का कहना है कि लागत कम करने के उपायों से आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में लोग योजना से बाहर हो सकते हैं। हालांकि सरकार का इस पर कहना है कि वे NDIS के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने कहा है कि सरकार प्रवासन संख्या कम करना चाहती है, लेकिन साथ ही देश में कौशल यानी स्किल की कमी को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। सरकार आने वाले वर्षों में फॉरेन इमिग्रेशन को प्रतिवर्ष 2,25,000 तक सीमित करने का लक्ष्य रख रही है। बात करें भारत की, तो धर्मशाला में खेले गए वर्षा प्रभावित एक दिवसीय मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। बारिश के कारण मैच को 25-25 ओवर का कर दिया गया था। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने लक्ष्य 13 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। इस मैच में कप्तान शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 11 चौकों और 2 छक्कों की मदद से टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हमने सुना आज का न्यूज फ्लैश, और आपको बता दूं कि इस न्यूज फ्लैश को आप एक बार फिर से SBS हिंदी की जो वेबसाइट है वहां पर सुन सकते हैं, यदि अपने आज की जो खबरें हैं वो मिस कर दी हूं। तो सुनिए फीफा विश्व कप 2026 के चौथे दिन का संक्षिप्त अपडेट। आप फीफा विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में SBS और SBS ऑन डिमांड पर भी देख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं।

0: जर्मनी की शानदार जीत और जापान की दमदार वापसी के साथ विश्व कप का आगाज। नमस्कार, मैं हूँ वृषाली जैन और ये है फीफा विश्व कप 2026 के चौथे दिन का संक्षिप्त अपडेट। जर्मनी ने अपने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए ह्यूस्टन स्टेडियम में ग्रुप ई के मुकाबले में पहली बार विश्व कप खेल रही कुरासाओ को 7-1 से करारी शिकस्त दी। फेलिक्स मेचा ने मैच के सिर्फ 6 मिनट के भीतर गोल दागकर 4 बार की विश्व चैंपियन जर्मनी को बढ़त दिला दी। ये अब तक टूर्नामेंट का सबसे तेज गोल है। हालांकि विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश कुरासाओ तब सुर्खियों में आ गया जब लिवानो कॉमेनेंसिया ने 21वें मिनट में गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर लिया। हालांकि इसके बाद जर्मनी ने मैच पर पूरा नियंत्रण बना लिया और 6 और गोल दागते हुए एक आसान जीत दर्ज की। उधर ग्रुप एफ का आगाज डलास में जापान और नेदरलैंड्स के बीच 2-2 की बराबरी के रोमांचक मैच के साथ हुआ। नेदरलैंड्स ने कप्तान वर्जिल वैन डाइक और क्रिसेंसियो समवेल के गोलों की बदौलत 2 बार बढ़त हासिल की, लेकिन जापान ने दोनों बार शानदार वापसी की। पहले केतो नाकामुरा ने स्कोर बराबर किया, फिर मैच के 88वें मिनट में डाइची कमादा ने हेडर गोल दागकर जापान को 2-2 की बराबरी दिला दी और अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण 1 अंक सुनिश्चित किया। उधर फिलाडेल्फिया में कोट डी आइवो और इक्वाडोर पहली बार विश्व कप में आमने सामने थे। मैच के 90वें मिनट में अमादा डियालो ने नाटकीय विजयी गोल दागकर कोट डी आइवो को 1-0 की जीत दिला दी और टीम को अहम 3 अंक दिलाए। वहीं मेक्सिको के मोंटेरे स्टेडियम में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। जापान और नीदरलैंड्स के बीच ड्रॉ के बाद अब स्वीडन ग्रुप एफ में अकेले शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। वहीं सोकिरोस तुर्की पर 2-0 की शानदार जीत के बाद पहली बार अपने बेस कैंप लौट आए हैं। इस जीत ने ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप डी में मजबूत स्थिति पर पहुंचा दिया है, लेकिन अब टीम का ध्यान 19 जून को होने वाले अपने अगले मुकाबले पर है, जहां उसका सामना मेजबान अमेरिका से होगा। कोच टोनी पॉपोविच की टीम फिलहाल रिकवरी और अगले मैच की तैयारियों पर ध्यान दे रही है।
1: Playing the host nation, so another special occasion for us, and we need to recover from this well, but also emotionally we need to recover because our young boys would never have experienced something like this.

0: So we need to enjoy it, recover from it, and see how they are for the next match.
1: आगे बात करें पांचवें दिन की, तो स्पेन अपने अभियान की शुरुआत विश्व कप में पहली बार खेल रही केप वर्डे के खिलाफ करेगा, जबकि ग्रुप जी में बेल्जियम का सामना इजिप्ट से होगा। इसके बाद ग्रुप एच में उरुग्वे और सऊदी अरेबिया आमने सामने होंगे, जबकि ईरान की भिड़ंत न्यूजीलैंड से होगी। सभी टीमें नॉकआउट चरण की दौड़ में शुरुआती अहम अंक हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। आप सुन रहे थे फीफा विश्व कप 2026 के चौथे दिन का डेली अपडेट। मैं हूँ वृषाली जैन। फीफा विश्व कप 2026 का हर पल देखें लाइव और मुफ्त SBS और SBS ऑन डिमांड पर।
2: तो दोस्तों, फीफा विश्व कप के चौथे दिन का ये अपडेट आप तक लेकर आई थी वृषाली जैन। और यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, लौटकर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन रेस डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर के साथ। सुनते रहें SBS हिंदी।
3: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: SBS Audio.
6: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं।
7: यही ज्यादा दिया। चुनते हैं हम
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है।
12: Far from the partisan politics.
13: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। SBS Audio app डाउनलोड करें या फिर
14: sbs.com.au/audio.
2: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। आपको बता दूं कि वक्त हो रहा है 5:14, और यदि आप आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जरा देरी से जुड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं। आपको बता दूं कि आप हमारे सभी अंश और कार्यक्रमों को SBS हिंदी की जो वेबसाइट है यानी sbs.com.au/hindi पर जाकर सुन सकते हैं। इसके अलावा अब हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हैं, तो यदि आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और फॉलो कर लें। तो ब्रेक से पहले हमने नजर डाली थी आज की खबरों पर और हमने सुना था कि फीफा विश्व कप के चौथे दिन में क्या क्या हुआ है, और अब वक्त आ चला है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। तो ऑनलाइन गलत जानकारी, नफरत भरी भाषा, एंटीसेमिटिज्म, इस्लामोफोबिया और प्रवासियों के प्रति बढ़ती नकारात्मक सोच जैसी चुनौतियां आज भी ऑस्ट्रेलियाई समाज का सामना कर रही हैं। ऑस्ट्रेलियन रेस डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर, नस्लीय भेदभाव आयुक्त गिरिधरन सिवारमन इन सभी मुद्दों पर अपनी राय साझा करते हुए बताते हैं बहुत सारी बातें, जो कि हम आने वाले अंश में सुनेंगे। और ये अंश आप तक लेकर आ रही हैं प्रीति जब्बल।
15: ऑस्ट्रेलिया को दुनिया के सबसे सफल मल्टीकल्चरल देशों में गिना जाता है और हर साल दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोग यहां बसने आते हैं, लेकिन इसके बावजूद वर्कप्लेस, यूनिवर्सिटीज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रेसिज्म की घटनाएं आज भी सामने आती रहती हैं। तो आखिर रेसिज्म से निपटने और ये सुनिश्चित करने के मामले में कि हर व्यक्ति खुद को इस समाज का हिस्सा महसूस करे, ऑस्ट्रेलिया कितना सफल रहा है, इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऑस्ट्रेलिया के रेस डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर श्री गिरिधरन सिवरमन।

0: प्याले में।
1: तो दोस्तों पीयूष जी का संदेश हमें आया है, लिखते हैं, यू शुड कवर अ सेगमेंट ऑन द ओनली इंडियन ऑफिशियल फोटोग्राफर अ वुमन हु हैज गॉन थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस एंड इज कवरिंग फीफा वर्ल्ड कप। हर नेम इज गीतिका तालुकदार। तो आपको बता दूं पीयूष जी कि उनके साथ एक खास साक्षात्कार हाल ही में नताशा कॉल ने किया हुआ है, जो आपको हमारी वेबसाइट यानी sbs.com.au/hindi पर मिल जाएगा। तो आप जरूर जाएं और सुनकर बताएं कि ये अंश आपको कैसा लगा।

0: Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: sbs.com.au/hindi ko apna online home banaiye. Taza tareen khabrein apni bhasha mein paiye. sbs.com.au/hindi par jaye. Kya aapko SBS Hindi sunna acha lagta hai? Apni baatcheet humse jari rakhiye hamare Facebook page par. Hamara page like karein. SBS Hindi Facebook par bhi hai.
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो इस आने वाले अंश में हम अभिनेता विक्रांत नारायण से बातचीत करेंगे, जो हाउ टू टॉक ऑस्ट्रेलियंस द मूवी में नजर आने वाले हैं। वे बताते हैं कि कैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ लैंग्वेज के छात्रों की ऑस्ट्रेलिया यात्रा अचानक मोड़ लेती है और वे सिडनी या मेलबर्न की जगह रूरल डब्बू में पहुंच जाते हैं। विक्रांत नारायण के अनुसार, फिल्म हास्य और सांस्कृतिक गलतफहमियों यानी मिसकंसेप्शंस के जरिए पहचान, भाषा और असली ऑस्ट्रेलिया की समझ को दिखाती है। वे ये सब कुछ साझा करते हैं इस बातचीत में, और आइए ये अंश अब आपको सुनाती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि ऑस्ट्रेलियाई लोग इतनी अलग तरह से क्यों बात करते हैं? उनके मजेदार स्लैंग्स, अनोखी संस्कृति और रोजमर्रा की आदतें दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। इसी पर बनाई गई थी सीरीज हाउ टू टॉक ऑस्ट्रेलियंस, जो कि अब जल्द ही एक फिल्म में तब्दील होने वाली है। आपको बता दूं कि इस 8 भागों की कॉमेडी सीरीज में भारत के एक काल्पनिक भाषा महाविश्वविद्यालय के छात्रों की नज़र से ऑस्ट्रेलियाई कल्चर को समझने की कोशिश की गई। अब मजेदार किरदारों, दिलचस्प घटनाओं और ह्यूमर के माध्यम से इस फिल्म में दिखाया गया है कि अलग अलग संस्कृतियाँ एक दूसरे को कैसे देखती और समझती हैं। तो आइए बात करते हैं इस फिल्म के एक्टर विक्रांत नरेन के साथ। विक्रांत जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी जो एक्टिंग की जर्नी है, जो सफर है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी?
6: शुरुआत तो भारत में ही हुई थी, जब मैं काम भी करता था वहाँ पे। मतलब कॉर्पोरेट जॉब में था, मार्केटिंग सेल्स के बाद मैंने खुद अपना फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे म्यूचुअल फंड है उसको बेचा। और उससे पहले शौक तो जब से था, लेकिन मैं थिएटर करता था आउटसाइड ऑफिस आवर्स, मतलब काम खत्म होने के बाद हिंदी थिएटर किया मैंने 3-4 साल, और एक्टिंग का कोर्स भी किया पार्ट टाइम श्रीराम सेंटर से। के बाद जब मैंने माइग्रेट किया ऑस्ट्रेलिया 2000, तो 10 साल तक मैंने कोई एक्टिंग नहीं की। मैं सुपरमार्केट मतलब कोल सुपरमार्केट में काम करता था मैं। तो फिर वो होता है ना, पुराना जिज्ञासा वो जागृत हुआ एक दिन। तो फिर मैंने स्टूडेंट फिल्म्स करना चालू कर दिया, जस्ट टू गेट मतलब ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस। उसके बाद मेरे को बस वो एक एजेंट ने फिर आगे बढ़ाया काम, फिर जाके ये प्रोजेक्ट मिला, फिर ऐसा शुरू हुआ मेरा जर्नी।
5: इस फिल्म के शूटिंग के दौरान ऐसा कोई ऑस्ट्रेलियाई पहलू आपको पता चला हो?
6: अब ऐसा है कि ये मतलब हर एक पहलू ही मजेदार था, कोई एक पहलू पे नहीं बात सकते, क्योंकि ये स्क्रिप्ट में ये इतना फनी था, इसको पढ़ के ही हंसी आ रही थी। और इसको डेड पैन स्टाइल से बोलना था, मतलब कि, और मैं जब तक काफी समय व्यतीत कर चुका था, तो मैं जान के भी अनजान बन रहा था। तो

0: उसका एक पहलू नहीं है, वो रोज ही ऐसे होता था। उसको को एक्टर से करना, फिर किसी बात में हंसी आ जाना, और ऐसे ऐसे जगह गया जो मैं कभी नहीं गया, जहाँ पे शूटिंग था। तो बेसिकली इसको करना ही एक बहुत बड़ा मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। मतलब कि उसको स्ट्रेट फेस डेड पैन करके कॉमेडी स्टाइल में बोलना स्क्रिप्ट को, जो मैं जानता हूँ ऑस्ट्रेलियन कल्चर, क्योंकि मैंने इतना टाइम लिया है, तो वही मेरे लिए बहुत ही अद्भुत चीज था।
1: जी, आपने बात की अभी कॉमेडी की, तो पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि कॉमेडी या ह्यूमर के माध्यम से कल्चर को दिखाना कितना प्रभावी होता है?
0: देखिए भावे जी, ये बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि हम आते हैं किसी भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। अभी ये पहले इसका वेब सीरीज आया था 10 साल पहले, हाउ टू टॉक ऑस्ट्रेलियन, अब ये फिल्म आया है, उसी का बड़ा रूप है। अब ऐसा है कि हम एक कोई प्री कंसीव नोशन से जाते हैं, और हम लोग हम भी स्टीरियोटाइपिंग करते हैं, वो भी स्टीरियोटाइपिंग करते हैं। इसका हिंदी का शब्द नहीं मिला मुझे, इसको उसका बायस कह सकते हैं, ऑब्लिक स्टीरियोटाइपिंग। तो ऐसा जो प्रोजेक्ट है, जो मतलब ये हास्य फिल्म है, जो ये इसको तोड़ता है, तो ये दोनों साइड को जोड़ता है, ये दोनों दोनों साइड के रिश्तों को ये मजबूत करता है, क्योंकि ये स्टीरियोटाइपिंग बायस को तोड़ता है, और एक तरह से एक ये एक वार्तालाप, ये एक तरह से डिस्कशन करता है, ये शुरुआत जो अच्छा है। मतलब कि ये इसका मेन मकसद है एंटरटेनमेंट, क्योंकि ये सिचुएशनल कॉमेडी है ऑन असिमिलेशन। जब आदमी जाता है तो दूसरा कल्चर को जैसे समझता है, उसपे फनी चीजें, वो जो इंसिडेंट घटती है उसी के ऊपर है ये, तो ये यूनिवर्सल है। लेकिन कई जोक है जो वो समझ में नहीं आएंगे जो यहाँ रहता है उसी को, बट कई जोक यूनिवर्सल है, क्योंकि एब्सर्डिटी और सिचुएशनल कॉमेडी है ऑन मतलब कि असमिलेशन इनटू अंडरस्टैंडिंग अदर कल्चर। तो ये कई कई जगह में यूनिवर्सल भी है, कई जगह पे ये सिर्फ जैसे यहाँ के लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, और धीरे धीरे भारत में जब जब भी रिलीज होगा वहां पे आएगा। लेकिन अब ये मेरा कहना है।
1: जी, अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि ये जो शो है, ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में कौन सी गलतफहमियों या मिसकंसेप्शंस जिनकी हम बात कर रहे हैं उनको दूर करता है?
0: अब ऐसा है कि इनके कुछ अंग्रेजी बोलने का ढंग, जब जब आदमी यहाँ आता है तो वो समझ में नहीं आता, इनका स्लैंग, इनकी आइडियम्स, और ये तो जैसे इनका एक जैसे मेरा फेलो एक्टर को बोला किसी ने कि हाउ आर यू गोइंग, तो उसने बोला आई एम गोइंग बाय ट्रेन, तो अंग्रेजी उसकी बहुत अच्छा, वो इंजीनियर है, तो ये जो है ना, ये है तो वही अंग्रेजी, बट इसका बोलने का ढंग थोड़ा अलग है। तो हम ये समझने के लिए हम कुछ ज्यादा पढ़ लेते हैं, फिर तो उसका प्रैक्टिकली जब हम इसका हम जैसे ये अनुभव करते हैं, तो वो थोड़ा सा फनी हो जाता है, या तो उसको समझ में नहीं आता या वो हम उनको नहीं समझते, तो ये दोनों तरफ का ये जो एडजस्टमेंट लेना देना है, बेसिकली लेना देना के ऊपर है, कुछ हम दिया कोई हमें लेना है, ये जो प्रॉब्लम आती है ये उसके ऊपर है। और ऐसे ये एक मैंने उस शब्द बोला, ऐसे मेरे साथ भी कहीं हुआ, गुड डे मेट, जैसे मैं रास्ते में जा रहा हूँ, हाउ, तो बाकी जगह हाउ आर यू बोलते हैं या गुड डे मेट बोलते हैं, और कोई अगर टेलीफोन में किसी कस्टमर सर्विस कोई बोले वो भी ऐसा स्लैंग यूज कर सकता है। तो ये चीज जो नया कोई आता है तो उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है ये कल्चर, ये इस तरह का बोलचाल को समझने में। तो कुछ तो इस पे है, बट कई चीज इस पे ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री और इनका बाकी परंपरा को भी दिखाता है, तो ये काफी नॉलेजेबल भी है, सिर्फ इनका अंग्रेजी के ऊपर नहीं है, इसमें इनका पूरा हिस्ट्री जो है, क्योंकि मुझे ऐसे किसी ने बोला ये 70 और 80 का सेटिंग है, इसके थॉट्स और इसका बाकी चीजें मॉडर्न है, तो हम पुराना स्टीरियोटाइप को दिखा रहे हैं और सेटिंग इसका मॉडर्न है। तो ये एक्चुअली आई वुड से कि ये ऑलराउंड कॉमेडी है, सिर्फ इनका बोल चाल और ढंग पे नहीं है, ये बाकी चीज भी कवर करता है, इनका हिस्ट्री और इनका पूरा पुराना तरीके का जीने का ढंग और मॉडर्न, क्योंकि ये रूरल ऑस्ट्रेलिया पे ज्यादा है, तो एक्चुअल आप अगर इनका समझे इनका कल्चर तो आपको छोटा टाउन में जाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आउटबैक जिसे कहते हैं, आउटबैक पे वहां क्योंकि ये शूटिंग ज्यादातर उधर ही हुआ है, क्योंकि ये मॉडर्न जो ऑस्ट्रेलिया है ये थोड़ा पॉलिटिकल करेक्टर्स पे आ गया है, पीसी, तो यहाँ पे आप ज्यादा नहीं समझोगे ये जो, और वहां पे अभी भी मुंह पे बात करते हैं, इन योर फेस, तो वहां पे ये जो नए हैं सेटलर वो ज्यादा समझेंगे। तो ये जब भी ये रोड ट्रिप है, गोइंग थ्रू रूरल टाउन आउटबैक और उसके ऊपर, और यही यही यही पे कॉमेडी का प्रभाव ज्यादा हुआ
1: बहुत
0: है जी।
1: ही मजेदार विषय है और
0: हाँ,
1: आपसे आज बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। फिल्म
0: हाउ टू
1: से
0: टॉक ऑस्ट्रेलियंस द मूवी।
1: आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: थैंक यू भावे।
1: SBS न्यूज के लिए इस अंश को आप सबके सामने SBS हिंदी में लेकर आई भव्या पांडे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, ये अंश पसंद आया होगा, और यदि आपको इस तरह के कंटेंट में जरा भी दिलचस्पी है तो ये मूवी जरूर देखें और बताएं मुझे कि कैसी लगी आपको ये प्रस्तुति। चलिए, वैसे तो वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन सोच रही हूँ कि जाने से पहले आपको एक गाना सुना दूँ।

0: Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
1: Mom, please.
0: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
1: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
0: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
1: Wow, you weren't kidding, Mom.
0: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
0: No, the other one.
1: What's in your wallet?
0: Oh, that's my boy.
2: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: 3 employees and 2 work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
7: Ready to order?
8: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
7: Everything?
9: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27, and they're earning unlimited 3% cash back.
10: Yes, Chef!
8: This is so nice.
9: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
8: Ooh, tiramisu!
9: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
11: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो पालतू जानवर परिवार की कीमती सदस्य होते हैं जो खुशी और साथ देते हैं, तो उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए क्या जरूरी है, ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के इस अंश में इसी विषय पर सुनिए जानकारी जो कि आप तक लेकर आ रही हैं अनीता बरार।
12: आप सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड, SBS ऑडियो पॉडकास्ट जो आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने के तरीके में मदद करता है। अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है तो उसे नियमित तौर पर पशुओं के डॉक्टर के पास ले जाना आपके पालतू पशु को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के इस एपिसोड में आप जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जानवरों के क्लिनिक में जाने पर क्या होता है, आप रूटीन चेकअप, इमरजेंसी केयर और अपने अपॉइंटमेंट की तैयारी कैसे करें। SBS हिंदी पर मैं हूं अनीता बरार। जिम्मेदार पालतू पशु के मालिक यानी पेट ओनर होने का अर्थ है कि अपने पशु को खाना देना, एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और सुरक्षित घर और नियमित वेटरनरी केयर देना ताकि वो स्वस्थ रहें। ऑस्ट्रेलिया के लगभग 3/4 घरों में पालतू पशु होता है, इसलिए वे परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं, जैसे कि वीरा सेटो का 13 साल का लैब्राडोर चौके।
13: Oh, he's 100% a member of the family. He's not like family, he is family. And I guess like for us humans, it's really important for a professional to keep an eye on their health. So the annual checkup is a good chance for the vet to check their general health, give them their vaccination, talk about any questions that you might have.
12: जानवरों की डॉक्टर डॉक्टर डायना बारकर बताती हैं कि पालतू जानवर अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को छिपाने में बहुत माहिर होते हैं।
14: So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet. Having that relationship also helps minimize any stress or anxiety that your pet might have going to the vet. So they might get used to the vet a little bit more than just sort of arriving when they're unwell.
12: Preventing care में vaccination, parasite prevention और dental care शामिल है ताकि बीमारियों को होने से पहले ही रोका जा सके। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में भी बीमारी के किसी भी लक्षण का जल्द पता लगने में मदद मिलती है। वेटरनरी डॉक्टर रायन ओंग कहते हैं कि वेटरनरी क्लिनिक जाने से पहले आप कुछ चीजें कर सकते हैं, सभी बातों को लिख लें क्योंकि भूल जाना संभव होता है।
15: It's easy to forget all the concerns that you have, so usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits, including any recent medication.

0: patients that your pets may be on.
1: और जैसा कि सीटो बताती हैं, अपॉइंटमेंट बुक करते समय अपने विजिट का कारण बताएं और क्लिनिक को अपने पालतू जानवर की किसी भी खास जरूरत के बारे में भी बताएं।
2: Whether that's helping us get our pet into and out of the car, whether it's making sure that they've got more space in the waiting area, they can be very helpful to make sure our pet has as positive an experience as possible at the vet.
1: Dr. Barker का कहना है कि अलग अलग प्रजातियों को अनजान माहौल से निपटने में मदद करने के तरीके हो सकते हैं।
3: The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around. Remember that everybody at the vet loves animals. So they're very happy to give your pet lots of cuddles or listen to your instructions about what your pet likes best. They may ask that you put your dog on the scales, and usually cats are weighed in a consult room.
1: Dr. Barker का कहना है कि एक बार जब आप consultation room में पहुंच जाते हैं, तो veterinary doctor आपके पालतू जानवर का physical examination करते हुए सवाल पूछेंगे, और आपको अपने पालतू जानवर की health के बारे में कोई भी चिंता हो, उसे बताना चाहिए, ताकि doctor आपके साथ इलाज के option पर बात कर सकें। कंसल्टेशन के बाद जानवरों के डॉक्टर कोई भी दवा देंगे जिसे आप रिसेप्शन से ले सकते हैं और आप फीस आदि भी दे सकते हैं। डॉक्टर रायन ओंग बताते हैं कि अगर आपका पालतू जानवर अचानक से बीमार हो जाता है या घायल हो जाता है तो कई क्षेत्रों में खास इक्विपमेंट वाले जानवरों के इमरजेंसी सेंटर भी मौजूद हैं।
0: Might also include things like accidents or injuries. Or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out. Trouble breathing, seizures, collapse. If you suspect that perhaps your pet has eaten something toxic. And in Australia, snake bites are something that we always treat pretty urgently. So emergency hospitals are staffed by vets and nurses who are trained specifically in emergency and critical care.
1: अगर आपको अपने पालतू जानवर के बारे में कोई भी अर्जेंट चिंता है, तो डॉक्टर रोंग सलाह देते हैं कि सलाह के लिए वेटरनरी इमरजेंसी सेंटर पर फोन करें।
0: Give them a call before heading in. So
4: तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यानी भव्या पांडे के साथ SBS हिंदी पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उन सभी श्रोताओं को भी शुक्रिया जिन्होंने अपने संदेश आज के कार्यक्रम में मुझ तक भेजे। जाने से पहले ये प्यारा सा गाना सुनिए, और फिर हमारी मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नई बातों के साथ SBS हिंदी पर।

0: पेश करदे आं जिथो तुसी साडा अज दा प्रोग्राम सुन रहे हो। पर अज दे प्रोग्राम विच होण की वाला, हमेशा वांग करांगे जी पंजाबियां नाल पंजाबी विच पंजाबियां बारे गल्लां बातां, ते सुनांगे जी नवे पुराने पंजाबी गाने। जे तुसी भी अपनी मन पसंद दा कोई गाना सुनना चाहंदे हो ते SMS करके फरमाइश कर सकदे हो, किसे नूं कोई सुनेहा देना चाहंदे हो, बर्थडे एनिवर्सरी विश करना चाहंदे हो, ए सारा कुछ कर सकदे हो जी SMS करके। SMS करने लई नंबर नोट कर लो 0439799 0439799 7967। शो दे दौरान तुहाडे SMS पढ़ के तुहाडे मन पसंद गाने ता मैं वजाऊंगी ही, पर उस तो इलावा भी बहुत सारियां खबरां मैं लेके आई हां जी। अज दिन है जी सोमवार, यानी के साडे हफ्तावारी सेगमेंट पंजाबी डायरी दा, जिदे विच लावांगे जी पंजाब दी खबर सार। इस तो इलावा कैपिटल गेन टैक्स लागू होने वाला जी, पहला पहला घर वेचना सही होएगा या गलत, ए सारी जानकारी लेके आवांगे जी साडी अगली रिपोर्ट विच।
1: की निवेश संपत्ति नूं 2027 तो पहला वेच देना चाहिदा है जां लंबे समय तक अपने कोल रखना बेहतर रहेगा।
0: इस तो इलावा तुहानू सुनावांगे पंजाबी भाईचारा की कुछ कर रहा आस्ट्रेलिया विच। पंजाब तो आए सिमर गिल हुण पंजाबी भाईचारे दी आवाज बन चुके ने, ते ओ लड़ रहे ने जी MMA विच एज अ फाइटर।
2: देयर इज नॉट मेनी पंजाबी फाइटर्स राइट नाउ दैट आर लाइक एट द टॉप, यू नो व्हाट।
0: जानांगे उहनां दी जबानी, उहनां दी कहानी, ते नाल ही शुगर यानी कि जड़ी बीमारी है डायबिटीज दी, ओ भी बहुत वध रही है पंजाबी भाईचारे विच, ते आस्ट्रेलिया विच रहिंदे भाईचारे विच खास करके। इस बीमारी नाल किद्दां निजठिया जा सकदा है सुणांगे जी साडी नवी पॉडकास्ट सीरीज यानी कि पॉडकास्ट लड़ी सेहत संभाल दे राही।
3: तकरीबन मिला दा सारे जाणियां नूं हो सकदी है, बिकॉज़ आपां बहुत पंजाबी आं, आपां बहुत प्यार ले आं, आपां बहुत मिठे आं। पर
0: इस तो इलावा नवे नकोर गाने ता मैं वजावांगी ही, पर जे तुसी भी सुनना होवे अपनी मन पसंद दा कोई गाना, देना होवे किसे नूं कोई सुनेहा, है सारा कुछ कर सकदे हो जी SMS करके। SMS करने लई नंबर है 0439799767 0439799767। फिर जदों तक तुसी SMS भेज रहे हो, आओ रुख करदे हां SBS पंजाबी दे न्यूज़ रूम दा, ते लैने आ जी आसे पासे दी खबर सार।

ने पिछाड़ दिता। रिजोल्व पोलिटिकल मोनिटरी पोल ने लगभग 2000 वोटरां दा सर्वेखण कीता, जिस विच सैनेटर हैंसन नू अपनी पसंद दा नेता चुनिया, जदकि 29% ने मौजूदा प्रधानमंत्री नू चुनिया अते 16% ने विरोधी धिर दे नेता एंगस टेलर नू चुनिया। उथे फ्रांस विच ग्रुप 7 आगुआं दी सिखर मीटिंग दे विरोध विच जनेवा विच लगभग 50,000 प्रदर्शनकारी इकट्ठे होए, जदों कि कुछ प्रदर्शनकारियां ने स्विस शहर विच पुलिस अधिकारियां अते अमरीका दी इमारत उत्ते हमला करके भन्न तोड़ कीती, जदकि ज्यादातर ने मनुखी कारणां उत्ते विचार ना करन वाले देशां विच दौलत अते शक्ति दे केंद्रीकरण दे विरोधी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीता। हुण गल भारत दी, जिथे मानसून दा सीजन 1 जुलाई तो शुरू हो रहा है, पर पिछले साल 25 अगस्त नू रावी दरिया नेड़े एक पुल हड़ा कारण भन्या गया सी, पर हजे तक उस नू मुड़ सुरजीत नहीं कीता गया। इस नू लेके जिथे सियासत भख रही है, उथे दरिया कंडे रह रहे लोग हड़ दे संभावित खतरे नाल जूझ रहे ने। लोका अंदर रोस है कि प्रशासन ने उना दी जान माल दी रख्या लई उना मुताबक कोई भी ठोस कदम नहीं चक्या। इस दे नाल ही खत्म हुंदा है खबरां दा अज दा सिलसिला। देश दुनिया अते भाईचारे नाल जुड़ियां खबरां लई सुनदे रहो SBS पंजाबी।